चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905 7

0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तुहाडे बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। अज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नु कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट

डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते मैं डोगरन सोल नेहा शर्मा ते आज सैर करा दे है बागे बहू दी। ये जम्मू शहर दा बड़ा गे अच्छा बड़ा गे सुंदर मनोरम दृश्य आला भाग है जो कि तवी नदी दे कंडे बसेदा है। ते इत्थे बड़े गे शैल शैल बूटे न, हर तरह दे बड़े गे प्रकार दे फुल न जो अखें गी बड़ा सुकून दिंदे न। कन्ने गे कन्ने पहाड़ियां दे बिच इक इत्थे लेक भी है। ते कुल मिलाइए जेड़ा दृश्य है वह तो बड़ा गे अलौकिक दृश्य है। इत्थे तुस आखी सकदे हो तीन चीजें दा बड़ा गे सुंदर संगम है, धरती जल ते हरियाली। इन्हें तीनों दा जो प्रकृति ने इत्थे मेल पाए दा ओह दा के आखने, बड़ा गे शैल बड़ा गे सुंदर नज़ारा है। ये जिहड़ा बाग है ये एक किले दे अंदर बाहु किले दे अंदर बने दा है। ते जियां कि मैं तुसीं दस्सिया कि बहुत गे इहदी जो नज़ारे न इहदी बाग दी जो संरचना है वह प्रकृति ने बड़े गे अनोखे तरीके दी बनाई दी है। ते मन ते आत्मा दोनों प्रसन्न हो ही जांदे ने। इत्थे इत्थे बहुत अच्छी अच्छी तरह के एक फवारे लगे देन ते पौड़ी नुमा जिहड़ी संरचना की गई है वह इस दे नज़ारे ही चार चन्न लांदे ने। प्रकृति का ओत प्रोत इत्थे का माहौल मने की मुग्ध करी ओड़दा है। ते जदों अस घूमने जन्ने उत्थे ते उहदे बाद घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ते राती दा इस बाग का नज़ारा उहदा ते के आखना जदों अलग अलग तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स पौंदे ने फवारे पर ते अगे पिछे दे फुल्लें दे उपर जिहड़ी लाइटिंग होंदी है ते बस दिल करता अज इत्थे गे रही अज। इहदी खूबसूरती कन्ने आने वाले जिन्ने भी टूरिस्ट न जिन्ने भी यात्रु या फिर लोकल जम्मू दे लोग न वो बड़े गे आकर्षित हो ही जांदे ने।

0: दोस्तों नमस्कार, आदाब, उर्जू। आज प्रोग्राम हाजिर तुहस खदमत मज उम्मीद तुनो सन प्रोग्राम जरूर पसंद आम मे मीनल पीर
1: सामिन मान तरफ तम माय बोरत नमस्कार आदाब सत श्री अकाल तो हेलो
0: मिनल जी आज करो इस गोड थिएटरस मतलब कथ
1: बिल्कुल रमेश जी
0: वनान छे कशीर मंज लुक थिएटर यम करान ओस तिमन ओस वनान बांड यम कम से कम शीतन गामन मंज बसान ओस मगर नचुन तो गिंदुन ओस सिर्फ पंधानी गामन मंज करान
1: दपान महाराजा रणबीर सिंह सिंध ब्रोह ओस न थिएटर करने च या गिंदने च का खास मुहिम रणबीर सिंहन ओस उत्तर प्रदेश पेठ एक लटे रास करन वेल अनियमित यमो पन्ने कलाई हुन प्रदर्शन कशीर त जेम कोर अम कोई असर छ इस वनस ताम दमाल हिंदस नचनस मंस त बांडन हिंज कलाकारी मंस उछान अमी यस शायद यमन रास कर दिवनान
0: मिनल जी पत वही में सदी मंस येले स्कूल कॉलेज खुले तो यमन इदारन मंस त हेचन ड्रामाहन हंस एक्टिविटी शुरू गसी दोमी तरफ ओस सरसी मुल्कस मंस पारसी थिएटर चलन शुरू गोमत तो कशीर मंस त ऐस के नौजवान कलाकार यमो यम ड्रामा नेबर वुचमित ऐस तो ऐस आज सूत बड़ मुतमईन
1: दबान रमेश जी महाराजा हरी सिंह ने वक्त आओ गोडन्युक एमेचर ड्रामेटिक क्लब बनामने यात्मस कलाकार पारसी थिएटर शैली मंस ऐस ड्रामा करान मगर कशुर ड्रामा हस म्यून लतो तामत्य तवज्जो येले अक फनकार श्री नंदलाल नानाहन लोक सत्यच कहावत या राजा हरिश्चंद्र युस्तमो पत स्टेजस पेठते पेश कर
0: मिनल जी तो है सतस अमयुक प्रदर्शन सब्दियो बान महल एकिस लक्टिस थिएटरस में तो अमे अलाव आव ये साहिबानन तल बेन जानत गिंदर ये गो वारिया पॉपुलर तो सक्सेसफुल थी तो लोको कोर आत बड़ तारीफ ऐस्थो ड्रामा या थिएटरस मतलब कर बात जारी मगर गोड़ बोझ दू पन सामीन अख खूबसूरत बात
1: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ पहले बोझ

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। Summit Realty Expert।
2: रोते हैं तो अपनी इंश्योरेंस किसको करवाता यार?
3: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी का हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मैंगी जी को करवाते ने।
2: वाह यार नंबर तो दही मोना जी दा।
3: हाँ जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना।

हाँ, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क है। चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रहे टोरंटो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार, चढ़ती कला वाला निरपाओ निर्वैर रहेगा। उम्मीद मुस्कुराहट चेर द पाठ रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहो। मैं पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूजर्सी से तुम सुन रहे सानू नाइग्रा फॉल तो लैके बैरी तो नॉर्थ तक और ईस्ट के सू सुन रहे हैं हो सारनिया लंडन तो लैके जो सानू तुसी वैसे माफी चाहूँगा ईस्ट के इंटायर जी टी ए क्रॉस करके तुसी सानू सुन रहे हो। इस समय अगर तुसी इस शो नू इंजॉय कर रहे हो तो इस समय तुसी सानू सुन रहे हैं हो जो बेलविल तोरां तक सुन रहे हैं। सो एक वड्डी रेंज जिस विच तकरीबन 600-700 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाता है ओंटारियो का ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ के बीच तो तुसी इस सुनते हो। तो डिजिटल एम फ्रीकुएंसी 30 साल तो साउथ एशियन कम्यूनिटी नू लीडिंग फ्रीकुएंसी के तौर उत्ते सर्व कर रही है। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। अज की गलबात दे विच शामिल होने हैं। तो एक तो मैं जानना चाहता सीगा लोंग वीकेंड आ अज किन्ने क लोग ने जिहड़े इस समय अमृत सामने हुण अपना देसी बंदे का ट्रक निकलिया दो निकल गए अपने बंद के है ना ते एक ते खंडा बनाया सी ते किन्ने क लोग हो तुसी जिहड़े इस वेले कम्मां ते हो किहड़ा अपनी हाजरी लवा ली आपां सारे करदे आं आपां कल पर पहला तो ब्रिजी है मेरा ब्रिजी की हाल चाल है ब्रिजी कैसे
1: चढ़दी कला जी
0: चढ़दी कला ब्रिजी रेडी बैठा है और जैसे ही मेरे सामने इमरेट की फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है और जैसे कहते हैं कि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है भूखे को रोटी का बेकार को रोजी का इंतज़ार है। तो इंतज़ार में ब्रिजी हमारे साथ ब्रिजी एक बताएं कि आप क्या सर्विस देते हैं
1: जी हमारा आयुर्वेदिक थेरेपी है जी केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी स्ट्रेस के लिए टेंशन के लिए पेन के लिए सब ट्रीटमेंट है जी अभ्यंगम पोटली थेरेपी शिरोधारा शिरो अभ्यंगम पूरा ट्रीटमेंट करेगा जी
0: ठीक है। सो ब्रिजी नूं तुसी कांटेक्ट करना जिहदे विच ब्रिजी तुहाडा इलाज करदा किसी दे भी दर्द आ जिवें कूणियां दे विच दर्द लगदा कूणियां कमजोर हो गईयां लगदियां गुट टक टक दी आवाज आउंदी गोडियां चों तुहाडे तुसी लत्तां फोल्ड करके बैठ के देखो ते उहदे च तुहानूं लगदा कि जमीन ते कि तुहाडे नाड़ां फुल्लियां होईयां ने पेन फील होंगी लत्तां दे विच मतलब की है नॉट्स खून दी नाड़ां दे विच गठां बन गईयां ने ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा खून दा रक्तपान जिहड़ा हैगा रक्त नूं जिहड़ा हैगा स्टेबलाइज करना ते उहनूं चलाउणा ब्रिजी दा कम है। अज अज अपॉइंटमेंट्स है आपके पास
1: अवेलेबल है जी
0: लेडीज और जेंट्स दोनों वास्ते जिहड़ी हैगियां ने तुसी अज अपॉइंटमेंट लै सकदे हो ते इहनां कोल मसाज थैरेपिस्ट भी हैगे ने जिहड़े सर्टिफाइड हुंदे ने पर ब्रिजी हुणे आयुर्वेदिक तरीके नाल पुराने 400 साल तरीके नाल तुहाडे प्रॉब्लम्स बॉडी दियां नूं सॉल्व करदे ने। अज जाओ $55 दा गिफ्ट है 45 मिंट दे विच ब्रिजी ने $55 लैणे ने ते तुहानूं इस तों लाभदायक ते इस तों घट पैसियां दे विच कोई चीज़ नहीं मिल सकती जो ब्रिजी दिंदा तुहानूं उह दान है किस्म दा। सो ब्रिजी को पहुँचना ब्रिजी नंबर बोलो अपना
1: 647-619-1369
0: ब्रिजी नूं कॉल करने ब्रिजी थैंक यू सो मच
1: जी
0: 647-619-1369

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी दी तक गाले कुछ और तो मां भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 एल्बियन रोड इन रेक्सडेल 4162131165
1: एक लाइफ है जिससे लव है
2: ये कहते मुझसे सब है
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इन्नी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमता 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू। 32, 55, 80
3: ते 98
2: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
3: ओ काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905 450 2828, 905 450 2828।

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजर्बेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो,
2: 456-6161. जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल.
3: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी दे कड़े, चांदी दे चेन, चांदी दे ब्रेसलेट,
2: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट.
3: घोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाज दे विच सिल्वर हट. 647-339-3521.
4: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई.
5: लेनिया हो या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो. एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते. ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने. कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा. कॉल 905-678-1200.
6: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
7: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करणगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर. एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने. स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच.
6: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है. फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने.
7: कॉल करो 905-874-9878.
8: बंबा गया मैं जिते जावा मुंडे कहंदे बंबा गया.
9: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारियां तो सोना होवे.
10: बस इन्नी गल हो, कार

हाँ हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505।

0: इसमें बस वही डॉक्यूमेंट्स भी, इसमें नोटिस ऑफ असेसमेंट लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, एज लिमिट कुछ है नहीं, बड़े लोग पेंशन पे वो भी कर रहे हैं, और सिंगल मदर, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर जिनका नोटिस ऑफ असेसमेंट कम होता है उनको बेनिफिट है इसका।
1: तो आप ये जो एजुकेशन की ग्रांट लेनी है उसके लिए नंबर एक बार फिर नोट कर लें आप, 437264 आगे क्या है,
0: 3175
1: रिपीट कर दें।
0: हाँ जी, नंबर है जी 437264 3175, 437 264 3175।
1: थैंक यू वेरी मच सर, सोना शफी आने वाले दिन फिर गल करांगे। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी लैणा, एक गीत साढ़े लिसनर ने उन्होंने ब्रदर का गाया हुआ, गुरिंदर पड्डा, एक परदेसी देश पराए, थोड़ा सुनते हैं फिर आप अगे वधदे हैं। 905-673-3337 और बड़ी जल्द प्रभ संधु उड़ान रेडियो पेश करनगे, उस तो पहला पंजाबी लहर च भी आउणगे, खबरों का बुलेटिन भी तुहानू सुनावांगे। सनिचरवार वाले दिन एक बहुत वधिया प्रोग्राम हुंदा रात नूं 11 to 12 तक, फुल्ली वाली आ चमकौर सिंह पेश करदे आ पंजाबी रंग, ते साढ़े सवेर दे प्रोग्रामां दी शुरुआत जिहड़ी है ना वह 4 to 5 तक हरजीत जंजुआ, क्या बात है, सांझा कहिंदे प्रोग्राम पेश करदे आ, बहुत ही प्यारा। अज ही मेरी हरजीत जंजुआ जी नाल गलबात हो रही सी ते बड़ा कामयाब किया उन्होंने प्रोग्राम नूं तुसीं, तो सांझा विरसा 4 to 5, 5 to 6 तुहाडे लई पेश हुंदा अपना शमी पठल जी प्रोग्राम, बड़ा खूबसूरत लेके हाजिर होंदे ने, ते 5 to 6 ते फिर 6 to 8 खबरां दा बुलेटिन हुंदा, 8 to 9 नवी आ जांदा, ते सारे प्रोग्राम जिहड़े आ तुसीं बड़े चाह नाल सुणदे हो। 9 to 10 साडा वीर अमन बेनीपाल तुहानूं इन्नियां सोहणियां सोहणियां गल्लां नाल मोटीवेट करदा, अमन बहुत उहदे कोल नॉलेज आ ते मोटीवेशनल स्पीकर बन जाए तो होर भी चंगा हो सकता, ते अज भी मैं उन्होंने सुन रहा सी, बड़े लोगों नूं इंस्पायर करदे आ आपदा कारोबार शुरू करन लई, बिजनेस शुरू करन लई, एजुकेशन विच तरक्कियां लैण लई। तो 9 to 10 तुसीं अमन बेनीपाल नूं सुनदे हो, ते इसे तरह फिर साढ़े जसतगड़ जी ते नाल जनरल सिंह, हरजीत देव जी ते बहुत सारे होर प्रोग्राम इसे तरह लगातार चलते रहिंदे ने, इंजॉय करो ते सुनदे आ एक परदेसी देश पराए। चल भी गुरिंदर पड्डा।